जापन कर देवा जी आंद्र जी सब की जान ला सब की तेरा बस तेरा घर पल तेरा कारण बधाई तू करमान मत तेज अपने आप जर सर्व कला भरपूर दी सजित कथा नानक दास दत्त या गबन वत्ता श्लोक पवन गुरु बाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दुई दाई दाया की ले सकल जगत चंगियाई।

परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी।

एक घड़ी के सिमर ने पापी तरे अनेक। राजा जनक कहिंदे जा रहा सी ते नरकां दे विचों हाए हाए दियां आवाजां आउंदियां ने, जिवें गुरबाणी भी कहिंदी आ पापी कर्म कमाम दे करदे हाए हाए, नानक जो मथन मधाणियां त्यों मथे धर्म राए। कहिंदे जिहड़े पापी पुरश ने ना उह हाए हाए करदे ने, कहिंदे जिवें मधाणी दही नूं मथदी आ ते इसे तरह ही जिहड़े पापी ने उन्हां पापियां नूं भी इसे तरह ही रिड़किया जांदा है, इसे तरह ही सजा दित्ती जांदी है। क्योंकि कई लोग इत्थे कह दिंदे आ कि आही जग मिठा अगला कीने डिठा, भी इत्थे ही आ जो कुछ आ पाप पुन सब इत्थे ही, अगे कीने देखिया। पर गुरबाणी गुरु साहब जी गुरबाणी दे विच अगे दा जिक्र करदे ने, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। महाराज कहिंदे इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला, जिहड़ी उत्थे दी गल हो रही है वह अगली गल जिहड़ी हो रही है। कहिंदे पापी पुरश जिहड़े ने उह कर्म कमाउंदे ने हाए हाए करदे ने। आपां देखदे आं कई मनुख ऐसे ने जिहड़े सारी जिंदगी कदे गुरु घर नहीं जांदे, कदे गुरु साहब नूं जाके मत्था नहीं टेकदे, कदे बाणी नहीं पढ़दे, कदे नाम नहीं जपदे। ते कहिंदे जदों अंतम समां आउंदा ना, जदों अंतम वेला, ते फिर बंदा मंजे ते पिया होया हाए हाए दा बरलाप करदा, हाए हाए पुकारदा। आपां देखदे ही आ बजुर्ग किन्ने हाए हाए करदे आ, ते फिर उन्हां दे जिहड़े बच्चे ने जां नजदीकी ने उह कोल आण के कहिंदे बापू तू हुण हाए हाए ना कह, तू हुण वाहेगुरू कह, तू वाहेगुरू कह। हुण जिस बंदे ने सारी जिंदगी कदे वाहेगुरू नहीं कहा ते ओ अंतम समय भी ओदे मूंह चो वाहेगुरू नहीं निकल सकता। मारा कहिंदे ना जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा। कहिंदे इस शरीर रूपी भांडे च जो कुछ तू भरेगा ते बार भी ओही निकलना, जे सारी जिंदगी हाए हाए करदे दी बतीत होगी, सारा जीवन हाए हाए करदा रहा, ते फिर कहिंदे अंत वेले भी हाए हाए दी आवाज ही आउणी। ते जेड़ा हर वेले सिमरन करदा बंदगी करदा, रब ना करे आपां देखदे आ दुनियावी तौर ते उदाहरण है, किते रोड ते जांदिआं एक्सीडेंट हो जावे, एक्सीडेंट ते आम जिहड़ा दुनियावी बंदा ना उह जदों देखेगा उहदे मूंह चों निकलना हाए जां हाए मर गए, पर जिहड़ा कोई गुरसिख होएगा उहदे मूंह चों निकलूगा वाहिगुरू। इह दुनियावी तौर ते साडे नाल हुंदा घरां दे विच, जिहड़ा गुरसिख आ उहदे मूंह चों हमेशा वाहिगुरू निकलूगा। उह वाहिगुरू किन्नां दे निकलदा, जिन्हां दे हिरदे दे विच वसिआ होइआ। कहिंदे इसे तरह ही जदों जम लैण वास्ते आउंदे ने ते कहिंदे जदों सामने दिसदे ने ते आम जिहड़ा बंदा उह डर जांदा ते डर के उह हाए हाए करदा, पर जिहड़ा गुरसिख है उह डरदा नहीं, उह कहिंदा वाहिगुरू। जे वाहिगुरू मूंह दे विच्चों निकल गया ते महाराज कहिंदे जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुटे निकट ना जाइयो दूत। कहिंदे उहदे नेड़े फिर जमदूत भी जिहड़े उह आउंदे नहीं, उह पासे चले जांदे ने। तो इसे करके राजे जनक ने जदों सुनिया हाए हाए दीआं आवाजां सुनाई दित्तियां, कहिंदा कौण है? कहिंदे जी इधरले पासे नरक है ते पापी जीव जिहड़े ने उह हाए हाए करदे आ। ते राजा जनक कहिंदा भी इन्हां दा छुटकारा हो सकदा? कहिंदे हो सकदा जे इन्हां नूं इन्हां दे पापां दे बदले सिमरन दित्ता जावे। ते हुण पापी ते उह पता नहीं किन्ने क पाप कर्म कीते सी, पर कहिंदे इक घड़ी दा सिमरन राजे जनक ने दे दिता, धर्म राजे दी तराजी च रखिया, ते कहिंदे सारे जिहड़े नरकां वाले कुंड सी ना उह खाली करवा ले। एक घड़ी दा सिमरन, एक घड़ी 22.5 मिंट दी हुंदी आ गुरबाणी दे मुताबक। आपां पढ़दे ना 8 जाम 64 घड़ी, 8 घंटियां दे विच 64 घड़ियां हुंदियां ने, 22.5 मिंट दी घड़ी ते

हे सतगुरु सच्चे पातशाह अपने दास नूं किरपा करके आप ही रख लेना, दास ते किरपा करनी बख्शिश करनी। इउं सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परमेश्वर दे उस निरंकार दे चरणा दे विच अरदास बेनती करन दी भी जाचना दस रहे हैं। कहिंदे केवल ते केवल नाम दे नाल जुड़ना है, जदों आपां नाम जपांगे जदों आपां बाणी पढ़ांगे फिर गुरु साहिब जी की कृपा होवेगी ते जिहड़े साडे 84 दे बंधन ने वो कट्टे जा सकदे ने। होर कोई चारा नहीं है, जिन्ना मर्जी कोई जतन करता रहे। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने जिन्ने भी कर्म कांड ने, कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जगाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै। जिन्ने भी कर्म कांड ने होर सारे राज जमदूत ही खो लैंदे ने ते कहिंदे निर्वाण कीर्तन गावो करते का, कहिंदे उस परमेश्वर दा निर्वाण कीर्तन जिहड़ा है निष्काम होके उस परमेश्वर दी

करी अर देव गंधारी, गंधारी सीहुति उचारी, तनासरी ए पांचो गाई, माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग में मारा, प्रबल चंड कौशक उभारा, खौखट औ पहुरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए, पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सो

पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गाव है पांचो संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गवरी गाव है आसावरी तह पाछ सिंध भी अलापी श्री राग से पांचो थापी सालू सारंग सागरा और गोण गंभीर अष्ट पुत्र।

तत्वो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत

शीश पटकत जाके कान में खजूरा था से मुंड छटकत मित्र पुत्र हूँ के शोक सो आख गोचरिया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीश वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोक सो कामना अधीन काम क्रोध।

तवृज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान बन हुजरिन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक सौंगी कहूँ जोगी अब रागी बने कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंडधारी होय के लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीतर पुकार पर शीतकाल कुंचर ओगद अनेकदा पुकार ही। कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर डाक उठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइए अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पत।

सोई रास करहिम ओए दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही कि सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज उई मान सब एक भय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जाच गंधर्व तुरक हिंदु न्यार न्यार देशन के

आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते गछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हुए सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, केते को प्रत्यक्ष हुए बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कूकत फिरत केत रोबत मरत केत, जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग वासी केत मदि नाम का निवासी, के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त केत, सुआ पे चढ़त केत दुख को भरत है। गैन में उड़त केत जल में रहत केत, ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घस हारे, चंदन लगाए हारे, चोचार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गा हारे, गोरन मनाए हारे, मटी मटली बहारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित

बुद्ध दा वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछु रूप देखं कहां बासदा को फिर कौन भेखं कहां नामदा को कहा कह कहावे कहा कह बखाने कह मैं ना आवे।

न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखधि रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत वाणी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हो कहूँ योग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ योग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि की पृष्ठ की ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव्य कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं कहूँ चेष्टा चार्ज

ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश व्याख्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज व्याख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राजसाजंग धे राजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षयाद अद्वैत विधाता न त्रस्तं न ग्रस्तं।

जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्यात जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग

जेह राग न रूप न रेख रुखं जेह ताप न साप न शोक सुखं जेह रोग न सोग न भोग भुयं जेह खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जेह रच्यं क्षत्रि छत्र चितं जेह राग न रेख न रोग भणं जेह द्वैख न दाख न दुख गणं जेह अंड ते ब्रह्मंड रच्यो दस चार करी नव खंड सच्यो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जच गंधर्व फुणिंद भुजंग रच देव देव अभेव नरंग नर पान रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंग किये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न सोग न भोग भुअंग जेह जंपह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्न।

रज पावक पौन प्रचंड परी वन जास कियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवास तंग रज रोज एकादश चंद्र वितंदुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोग चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अनदूत भूत अछूत मतंगन गाद प्याद नाद गतंगन खेद अभेद छेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन खंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेग है अधोग ताग दग है अभूत ब्रह्म भेख है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेघ सेग भेग है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेघ है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में।

गंज आदि देव है कहो सो कैसे पाई है। जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न वान है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए, न देह है न गे है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है, न तात है न मात है, न अंग है न रंग है, न संग है न साथ है, न दुख है न दाग है, न द्वैख है न दी है, न सिंह है न स्यार है, न राव है न रंग है, न मान है न मौत है, न साक है न संक है, न जच है न गंधर्व है, न नर है न नार है, न चोर है न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है, न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है न रंग है, न रूप है न रेख है, न कर्म है न धर्म है, अजन्म है अभेक है, न तात है न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है अभेद है, न रंग है न भूप है, परे है पवित्र है, पुनीत है पुराण है, अगंज है अभंज है, करीम है कुरान है, अकाल है अपाल है, ख्याल है अखंड है, न रोग है न शोक है, न भेद है न भंड है, न अंग है न रंग है, न संग है न सात है, प्रया है पवित्र है, पुनीत है प्रमात है, न सीत है न सोच है, न घ्राम है न घाम है, न लोभ है न मोह है, न क्रोध है न काम है, न देव है न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चयन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए भूमौज है सदा।

गजाधपी नराधपी गरंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे पिसेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिय अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए सदैव सर्वलोक के

जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सपद पतार के तर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सब असुर विरोध दानव सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्व पड़त पड़त थके महाकप गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहो कब।

डावरू डवंगे बबर बवंगे बुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायद चमके भूखण दमके यद सिद्ध झमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन रंभ कपर्दन दैत जिणंग। चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खांडे अखंडन खून किते दामनी दमंगन धुजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोध प्रमाचन हृदय नराचन धर्म प्रते

सृष्टुपारण शुद्ध मते फणि अर्भुंकारण बाघ बकारण सहस्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलं जय जय हो सीमाघासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलं चाचर चमकार चिच्छोर हारण धूम दुकान द्रप मथे दाण विवृदंते जोग जयंते मदज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाश सूर्य।

अगब बंके भुजा फरन के शुद्ध गति जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दुष प्रचंडन खंड।

रक्ता सुरमर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल बदे सरदार विवरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम तुझे धूमराज विधुंसन श्रोण चुनसन सोम्भ नपादन सोम्भ मथे जय जय हो सी मै खा सुरमर्दन आद नील अगाध कथे।

अनंत तव कहो जथामत त्रण तंत। करता करीम गाधा कृपाल अद्वै भूत अनभय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जापो प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै के लखाए अंशिज तेज अनभय।

है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय जगत चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल उर्धंग विरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पार जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग छिज तेज अनभिजता जल धन महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न

दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बालक नी मन गारे पच पशु नग नाग नराध सर्व समय सब को व्रत पारे भूखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर दे दनहारे दाहत है दुख दोखन कौ दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमापत भेद कतेव भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रूप रुहान की रोज न डारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हम बेवना भेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेब थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत सो किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाद द्वेक सो भूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन नाथमाव दाग दोख छिद्र छह लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त के अच्छे है जान को देद अजान को देद जमीन को देद जमान को दह काहे को डोलत है तुम्हरे सुत सुंदर श्रीपद मापत लह।

और की बात कहा कहे तो सौ सो बेट ही के पंड बीज बचावे। जच भुजंग सुदान देवा भेव तुम्हें सभी कर ध्यावे। भूमा काश पताल रसातल जच भुजंग सब सुनयावे। पाए सके नहीं पार बाहू को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सभी खुजिया सुर हार परे हर हाथ नावे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो जह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध बेगद वेख जप्यो तिन्हु कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तबोधन केश धरे न मिले हर प्यारे। आसन कूट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे बहुकारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल हैं। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हु के मान है। ज्ञान हु के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव। काल हु के काल महाकाल हु के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव। गुर कर दिज गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना की तेग बांधे। अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने। पच्छम के पच्छमी पछान निज काम है। मरटा मंगेले तेरी मान सो तपस्या करे। देड़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंग वाली। दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर। बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस न्यावे। तिब्बती ध्याय दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सिंह फलत है। देव देवतान को सुरेश दान वान को महेश। गंग धान को अभेज कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहू बिन दीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार। सब विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचतता है। जीटी की जिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार। किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज उदासी। किते मुंडिया प्रकाशी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण। किते कुमेर गुलीन किते जाच कहियत है। करते हैं विचार बैना पूरन को पावे पार। ताहिते अपार निराधार लहियत है। पूरा अवतार निराधार है न पारावार। पाई है न पार वे अपार के बखानिये। अद्व अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ। के राशि है नासी के कमानिये। जंत्र हूँ न जात जा की पाप हूँ न मायता की। पूर्ण प्रभा की सोछटा के अन मानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र क्या के जानिए। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना किसान है। विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है। गया छय अविनाशी है। काम को गुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है। अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है। जंजाल को कटैया है कि कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है। महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है गया पदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार वार हूँ को पार। जग की जत विचार सो विचार को निवास है।
हिंगुला हिमान गावे हा बसी हल विद्यावे पूर बिना पार पावे असते अनास है देवन को देव महादेव हो के देव है निरंजन अभिवना तहत विनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हो के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया तुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्री के कोल के हंसनी से सिहारू मही राशि हुसैना पाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी सोसी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हला बानेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार वकांसी बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के ब्रतन की तेरे गीत गायत है भखरी कंधारी गोरखा खरी कर दे चारी पवन के आरी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाव काम रूप कमाओ सर्वठौर मैं विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र तेतापी नाथ कीरत तिहारी।

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जिन के वड़ भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपतास मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीवै ध्रग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धर्मस्तक लखया लखास धन धन सत संग।

मन चित वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाव जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भव करिया ऊडे ऊड आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब

बल जाइया तेरा अंत ना पारावरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब ध्यावह तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जीत मारे जी तू जिया का दातारा। हर ध्यावो संतो जी सब दुख विसारनहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो से वह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावह तुद जी, से जिन जुग मह सुख वासी। से मुकत भये जिन हर ध्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीव डियवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहचल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सुचियार मैंडा साई। जो तौभा वै सोई थीसी, जो तू दहे सोई हाँ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनू कृपा करह तन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ भैले निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड मना।
हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हाँ जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई परापत मानख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कतै नकाम। मिल साध संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भव जल तरन कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया,

सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह पद कियो, घड़ घड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, छींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घड़ घड़ के पट पट की जाने, जावद करख करा कर तारा, प्रजा धर तब देहे अपारा, जब आ करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ,

महा मूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदास, निरंकार का छीनत नह भव। आप आपनी बुध है जीती, बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्भुज खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे अस दुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल विख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अद्भुत भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशत फल पावे सोई दुख।

चौपाई सम सतरै सहस भणी जय अर्थ सहस भुन तीन कह जय भादव सदी अष्टमी रवारा तीर सतत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री।

की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख देख जग में दो चले राख आप मुहे और ना दले तुम मम करो सदा प्रत पार तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा।

जय जय जय सुरलोक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैया छतरी को पूत हौ, बामन को नह, कैतप आवत है जू करो अर और जंजार। जितो ग्रह को तोहे त्याग, कहाँ चित तामे धरो। अब रीज के देहो वह हम कौ, जहाँ बिनती कर जोर करो। जब आओ कि औद निदान बने, अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा। दसम कथा भागवत की, भाखा करीब नाय। अवर वासना नाहे प्रभु धर्म, जत के चाय सवैया। धन जियो तह को जग, मैं मुख ते हर चित मैं जुध बिचारे। देह अनत नानत रह, जस नाव चढ़े भाव सागर तारे। धीरज धाम बनाए एह तन, बुद्ध सदीपक ज्यों जियारे। ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ लै, कातरता कुतवार बुहारे दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भक्त नेत। स्वर्ग बास रघुबर कर, सगरी पुरी समेत चौपई। जो एह कथा सुने अर गावे, दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई, आद ब्या छह सकै न कोई। सम सतरै सैस पचावन, हाड वधी प्रथम सुख दावन। तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तर, सत द्रव तीर तरंग। श्री भगवत पूरन कियो, रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साद असाद जानो नहीं, बाद सुबाद विबाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सच सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न

0: सब को पूरा पे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
1: वधी सोच गना।

पौड़ी तुर कर्म जिना कौ तुर पाया तत् नि खसम त्याया एना जनता कै बस किचना हित रुपये की जगत पाया एक नानू तुम मिल रहे का पत खुआया गुर कृपा ते जाने।

पौड़ी सतगुरु पिटोहारे आज ते मिलिया खसम सुमालिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया एन नेत्र जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोथा फिर लेकिन विचारिया।

पौड़िया पे करना क्यों कला पहते तारी है देखा है किताब ना तरकती पके सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आए बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहब मनोविसारी है अपन हती अपना पे का सवारी है अपन हती अपना आपे ही कार्य सवारी है।